0: घर में कोई नहीं मान रहा है, तुम मान जाओ, भूल जाओ मुझे।
1: याद करोगी मुझे?
0: जब जब बारिश होगी तब।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSIS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में आए हैं मेहमान के रूप में डॉक्टर साहब, तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी।
4: जी, वेरी गुड आफ्टरनून।
3: डॉक्टर साहब, आज हमारे स्टूडियो में आप मेहमान के रूप में पधारे हैं। सबसे पहले तो हमारे सभी सुनने वालों को आप अपना परिचय बताएं।
4: जी, मेरा नाम डॉक्टर सुष्मिता सेन है और मैं लखनऊ से हूँ और मैंने हिंद मेडिकल कॉलेज से अपना MBBS कम्प्लीट किया है और करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एम्स। अभी मैं एम्स में PG की तैयारी की सोच रही हूँ, अभी मैंने डिसाइड किया नहीं है। मैं हर एक जर्नल फिजिशियन के रूप में अभी कार्यरत।
3: बहुत अच्छा है, और आप इतनी कामयाब हो रही है। और आज महिलाओं में अक्सर देखा जाता है बहुत सारी समस्याएं हैं, तो मैं आज विशेष तौर से महिलाओं के जो भी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में आपसे शेयर करूंगा, उनके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि आज आम जो महिलाओं में समस्याएं दिखाई देती है वो ज्यादातर क्या दिखाई देती है?
4: जी, आजकल बहुत जो कॉमन है वो है PCOD, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं। ये अंडाशय में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे रेगुलर पीरियड्स हो गए, महीना सही नहीं आता है बच्चियों का, तीन तीन चार चार महीने हो जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन बीमारी है, इसके लिए हम एक जांच करवाते हैं जैसे बोलते हैं हम अल्ट्रासाउंड।
3: जी,
4: अगर अल्ट्रासाउंड में क्लियर हमें नहीं हो रहा है तो फिर हम MRI करवाते हैं, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। और इसके लक्षण जानना बहुत जरूरी है, तो क्या आप इसके लक्षणों को जानना पसंद करेंगे?
3: जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये बताएं आप कि ये किस उम्र की बालिकाओं में ज्यादातर पनपना शुरू हो जाता है?
4: ये खासकर 14 से लेकर के 15 साल में ये शुरू हो जाता है, और ये मोटापे से संबंधित बहुत ज्यादा है। जिनके घर में मोटापा है उन बच्चियों के घर में बहुत ज्यादा कॉमन है ये PCOD। ये खासकर मोटापे से रिलेटेड बीमारी है, और जो चलना फिरना बिल्कुल भी नहीं है जिनके घर में, उनके घर में ये बीमारी बहुत ज्यादा है।
3: सुष्मिता जी, इसको पहचानने में कब इंसान मतलब गणना करने लग जाता है कि यह बीमारी हमारे में शुरुआत दस्तक दे चुकी है?
4: जी, जब ये बीमारी जब शुरू होती है तो महीना लगभग लड़कियों का 13 से 14 साल के उम्र के बीच में ये महीने की शुरुआत हो जाती है। तो अगर महीना बिल्कुल हर महीना सही आना चाहिए, अगर महीना सही नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत की बात है। और 90% केसेस में देखा जाता है कि लड़कियों को PCOD होता है, और इसमें चेहरे पे बाल आना, दाढ़ी, ये सब लक्षण होते हैं जो बिना जांच के ही पता चल जाते हैं। गर्दन थोड़ी सी काली होने लगती है, तो ये सारे लक्षण हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि चेहरे पे बहुत ज्यादा मुहासे होने लगते हैं, मोटापा, पूरे बॉडी में फैट बहुत ज्यादा इकट्ठा होने लगता है, तो इससे पूरा पता चल, बाल झड़ने लगते हैं। तो ये बाहरी संकेत से ही हमें पता चल जाएगा कि ये दिक्कत है।
3: अच्छा, गाँव में आज भी अक्सर जो छोटी बच्चियां हैं वो बात करने से डरती है, अपने गार्जियन को, अपने माता पिता को बताने से डरती है, तो आपकी क्या राय है इस संबंध में?
4: जी, मेरे ख्याल से ये लोगों को जागरूक हमें करना चाहिए। जितना लोग जागरूक होंगे उतना ही लोगों में ये जो थोड़ा सा शर्म जो भी है छुपाना, ये धीरे धीरे अब कम हो रहा है। जितना हम चीजों को बात करेंगे इस पे उतना लोग थोड़ा खुल के, अब तो बहुत सोशल मीडिया के थ्रू हम इन सब चीजों को धीरे धीरे हटा सकते हैं।
3: अच्छा, बात करें इसके बचाव की, तो हम शुरुआती दूर से अगर इस पे बचाव पर अगर कार्य करना चाहें जो भी महिला या बच्चियां हैं, तो मतलब कौन कौन सा खान पान रहना चाहिए उनका, क्या क्या दिनचर्या रहनी चाहिए?
4: जी, दिनचर्या में कम से कम उनको तेज दो एक से डेढ़ घंटे उनको चलना चाहिए, साइकिल चलाना चाहिए। साइकिलिंग जितना मूवमेंट होगा, जितना, ऐसा नहीं है कि दौड़ना है, लेकिन चलना फिरना 2 घंटे तो मिनिमम होने चाहिए। और घास पे चलना, नंगे पैर, ये सब भी बहुत ही लाभ माने जाते हैं, बेनिफिट होता है इनका, और दवाइयों से भी काफी लाभ मिलता है। और वेट लॉस, सबसे पहले अगर वजन ज्यादा है तो वजन को 20-30% उनको कम करना है, और हरी सब्जियां खाना है, रोटी चावल दाल ये सब उसको कम करके हरी सब्जियों को ज्यादा वरीयता लेना है।
3: सुष्मिता जी, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में महिलाएं या बालिकाएं अपने स्वास्थ्य पर उतना ध्यान नहीं दे पाती जितना पहले के समय में देते थे, तो क्या आप मानते हैं कि आज अपने आप के लिए भी समय निकालना जरूरी है, और जो पौष्टिक आहार है उन्हें लेना कितना उचित रहता है?
4: जी, बहुत ही जरूरी है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप महंगे महंगे फल लीजिए, 400-500 रुपए खर्चा करिए, आप सीजनल लीजिए, 2-10 रुपए के जो अभी तो सीजनल आ रहे, खीर आ रहा है 10 रुपए में ही आ जाता है, चुकंदर आ रहा है, ये सब 20-30 रुपए के बजट है, अपने स्वास्थ्य पे लगाइए और सस्ती चीजें सीजनल फल खाइए तो बहुत अच्छा रहेगा।
3: अच्छा, खाने में रोजमर्रा की जिंदगी में महिलाओं को क्या शामिल करना जरूरी होता है?
4: मेरे हिसाब से अगर ये खासकर की अगर गर्भाशय की बात है तो उनको खासकर दालचीनी का सेवन हो गया, बहुत ज्यादा मात्रा में कोई भी चीज नहीं खानी है, अदरक हो गया, ये सब इनको अपने खान पान में जरूर ऐड करना है, चुकंदर तो ऐड ही ऐड करना, उसमें आयरन होता है, फोलिक एसिड होता है, और दवाइयों से तो काम होता ही है लेकिन खान पान जितना अच्छा रहेगा उतना बेस्ट है। और 1 घंटा अगर ही समय देंगे टहलने और काम में तो फिर वो बीमारी और भी बढ़ती जाएगी। कुल मिलाकर के साइकिल, एक्सरसाइज, जॉगिंग जितना हो सके ये सब सबसे बेस्ट है। योगा, सूर्य नमस्कार अगर है तो सूर्य नमस्कार तो वन ऑफ द बेस्ट है मेरे हिसाब से।
3: बिल्कुल सुष्मिता जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई। मुझे आखिरी और अंतिम जो प्रश्न है मेरे मन में उभर रहा है वो ये है कि अगर पीसीओडी से ग्रसित महिला या बालिकाएं हैं तो उनको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी दवाइयों का डॉक्टर से उपचार करना चाहिए?
4: बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये सबको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी बीमारी है तो उसकी क्या जांच होनी चाहिए, क्या दवाइयाँ होती हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है। तो हम सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, एब्डोमेन, होल एब्डोमेन का करवाते हैं, तो उसमें हमें दिख जाता है कि अंडाशय का कितना साइज है, कितना बड़ा है, क्या दवाइयों से कंट्रोल हो सकता है या नहीं। तो ये सबसे पहली जांच होती है जो हर महिला को पता होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन। उसके बाद फिर हम FSH करवाते हैं, LH करवाते हैं, प्रोलैक्टिन करवाते हैं, ये सब खून में ही, ये एक बार हम खून का सैंपल ले लेते हैं और उसी से ही सारी जांचें हमारी हो जाती हैं। उसके बाद अगर जांच में कुछ निकला तो सबसे कॉमन है मान लीजिए कुछ नहीं भी निकला तो भी एक OCP हम देते हैं जो 21 दिन खानी होती है महिलाओं को
3: जी।
4: हर महीने 21 दिन खानी होती है वो OCP, और साथ में हम मेटफॉर्मिन भी देते हैं जो कि शुगर की दवा है, डायबिटीज की दवा है, लेकिन हम इसमें भी देते हैं मेटफॉर्मिन नाम की दवा आती है। तो इससे जो उनके अंडाशय का जो स्वास्थ्य है वो और अच्छा हो जाता है और धीरे धीरे ये बीमारी खत्म हो जाती है। और कभी भी उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा मुहासे हो और बाल आए तो तुरंत उनको संपर्क करना चाहिए ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट से, ताकि जल्द से जल्द उसका इलाज किया जा सके। और अगर दवाइयों से भी ना काम चले तो हम दूरबीन से सर्जरी करते हैं जिसे हम बोलते हैं ओवेरियन ड्रिलिंग। हम उनके अंडाशय में छोटे छोटे एक तरीके से हम उसको चुभाने की एक ड्रिलिंग करते हैं, ओवेरियन ड्रिलिंग। तो उससे क्या होगा, उनके अंडाशय में जो अंडे बन रहे हैं वो और तेजी से बनने लगते हैं। तो हम दूरबीन के जरिए उनके जो अंडाशय है उनके अंडाशय में हम थोड़े थोड़े बहुत निशान लगा देते हैं 10-15, तो जिससे अंडे बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है।
3: बिल्कुल सुष्मिता जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, और मैं चाहूंगा कि रेडियो के माध्यम से आप आम जन को क्या संदेश देना चाहेगी महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए?
4: मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि अपने स्वास्थ्य और अपने खान पान को सबसे उत्तम रखना है और कोई भी तली हुई चीजें नहीं खानी है, और टहलना है, योगा करना है, अपने शरीर को कम से कम 2-3 घंटे देने हैं, और बाहर की चीज तो बिल्कुल भी नहीं खानी है, और वरना बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। हमें छोटी छोटी चीजों पे बहुत ध्यान देना है ताकि वो आगे जाके खतरा ना बने।
3: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत सटीक जानकारी विषय पर आपने हमारी सभी महिलाओं, माता बहनों को बताया। इस कार्यक्रम में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।
4: जी, थैंक यू सो मच।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज, आपके अपने ऋषि मीना के साथ हाजिर है। स्टूडियो नंबर 6378024 75। आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं। लाइव सुनने के लिए रेडियो डीएस 89.6 ऐप डाउनलोड करें या यूट्यूब पर radios_gg सर्च करें। क्या चल रहा है आज, कौन सा गाना बजवाना है, बोलिए, हम तैयार हैं।
5: आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़े धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करके लोगों को लुभाते हैं। कई बार वे मशहूर हस्तियों या सरकारी नेताओं के डीप फेक वीडियो बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति आपको निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। निवेश चाहे शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, सोना या कोई भी हो, गारंटीड रिटर्न का दावा हमेशा धोखा होता है। ठग आपको फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर पैसा डालने के लिए कहते हैं। वहां आपको दिखाया जाता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असल में सारा पैसा धोखेबाजों के खाते में चला जाता है। याद रखें, न कोई सेलिब्रिटी और न ही सरकार कभी भी किसी निवेश पर गारंटीड रिटर्न की गारंटी देती है। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। संक्षिप्त और प्रभावी रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो बताएं, मैं और छोटा स्लैश और भी आकर्षक संस्करण भी बना सकता हूं।

गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका रेडियो दोस्त रेसी मिना। दोस्तों आप ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। दोस्तों सुबह के 10:01 का समय हो चुका है। फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 35 यानी 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। दोस्तों लेकर चलते हैं आपके मनपसंद कार्यक्रम हल्लो फरमाइश की ओर। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: सवेरा हो गया है, चिड़ियां घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, तुम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम मिलकर, स्कूल चले हम।
1: डियर साइंस एकेडमी, जहां पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर टेस्ट, डाउट

0: हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं आपका।
1: सर सवाई माधोपुर से मोनिका बोल रहे हूँ।
0: मोनिका जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हो आप?
1: दिनक दिन ताना ये धुन तो बजाना।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं मोनिका जी आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना। रेडियो डीएस में कुल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।

0: 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6-3-7-8-0-2-4-4-7-5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6
2: रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर। फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: हेलो
1: जी, नाम बताए सर।
0: सर मेरा नाम योगेश शर्मा है, मैं नसिया कॉलोनी 22 नंबर वार्ड से बोल रहा हूँ।
1: योगेश जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: सर मैं गाना सुनना चाहता हूँ उपकार फिल्म का, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश से ये गाना।
2: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें।

0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
1: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता:
0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
1: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों, हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें: 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों, नंबर एक बार पुनः लिखें: 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
4: गंगापुर सिटी के घर पर रेडियो डीएस।

0: हेलो
1: सर नमस्ते, मैं अनीता बोल रही हूँ नचे कॉलोनी से। सर मुझे वो गाना सुनना है एक पापा के ऊपर, पापा मेरे पापा।
2: बिल्कुल अनीता जी नमस्कार, सुना रहे हैं आप, आपकी सर्विस बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कुल किया, धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गाना सुनना चाहते हैं आप?
2: बादल हरियाणवी।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आप?

0: बिल्कुल चलाएंगे आपकी फरमाइश का गाना। बताओ कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: राजस्थानी सॉन्ग है सर।
0: बताएं कौन सा गाना है?
1: थारे नैना रो टमकार।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का गाना।

0: सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम।
1: डियर साइंस एकेडमी, जहां पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग, रिजल्ट फोकस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
0: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धरती।
3: यहाँ हर बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
4: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे. टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया. हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी. हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावत और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र. एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं.

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम है महेंद्र कुमार।
0: महेंद्र जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर, हमको सुनना थानेदार का गाना, पीना है तो अस्पताल।
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर, आपकी फरमाइश पे बेहतरीन सा गाना रेडियो डिश में कुल किया। धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, नमस्कार
0: जी। नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
1: नाम साबिर,
0: दशहरा मैदान गंगापुर सिटी से। बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: गाना है नजर बचा कर चले गए वो।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश से बेहतरीन सा गाना।

0: हेलो जी, नाम बताएं सर।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
1: नाम तो बाबू खान है। तबीयत कैसी है
0: सर? बढ़िया, बहुत अच्छी, आपकी दुआएं से। आप बताएं सर, आपकी कैसी है?
1: बढ़िया है, आपकी दुआएं ऊपर वाले करम।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मालूम तेरे प्यार की ठंडी आग में जलते जलते।

0: दोस्तों 10:47 का समय हो चुका है। फिलहाल आप मेरे साथ टून कर रहे 99.6 रेडियो ओडियस गंगापुर सिटी का तड़का, पर मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के साथ आप सुन रहे हैं लो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों इसी गाने के साथ साथ हम सुनते हैं अगले लिसनर की बातचीत।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
2: आरबी गुजर।
1: आरबी जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
2: तेरी नैना।
1: बिल्कुल सुना रहे मैम, आपकी प्रोवाइड से बेहतरीन सा गाना।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: आरबी गुजर।
0: आरबी जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
1: आप? तेरी नैना।
0: बिल्कुल सुना रहे मैम, आपकी प्रोग्रेस से बेहतरीन सा गाना।
2: हेलो
3: सर, नमस्ते
2: जी। नमस्ते सर, नाम बताएं आपका?
3: सजाद खान, पुराने निजाम।
2: सजाद जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
3: रंग महल के 10 दरवाजे।
2: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपको, आपकी फरवाइज का बेहतरीन सा गाना।

0: मैं चिरमिरी कुरासिया कालदी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
1: इंद्रपाल सिंह जी कैसे हैं आप?
0: ठीक है सर, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। आपका कार्यक्रम में फोन किया हूँ, ड्यूटी में हूँ, ड्यूटी परेड में ही फोन कर रहा हूँ।
1: बात है, चिरमिरी में कैसा तापमान है अभी फिलहाल?
0: सर यहाँ तो बहुत जबरदस्त गर्मी है सर।
1: गंगापुर सिटी में भी 36 डिग्री सेल्सियस तापमान अभी और 42 से 44 के आसपास।
0: वही उसी होगा सर, 42-44 एकदम बता रहा हूँ कि अभी एकदम जबरदस्त धूप है सर। धूप में तो जाने लायक नहीं है, ऐसा लगता है नौतपा जैसे लग रहा है सर। नौतपा तो बचा हुआ है, नौतपा जैसा है पूरा गर्मी है।
1: बताए सर आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: आज मैं सुनूंगा सर फिल्म का नाम है काला सोना।
1: काला सोना
0: का आशा भोसले का गाना है ना वो, कोई आया आने भी दे,
1: कोई आया
0: आने भी दे गायिका।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो
2: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
2: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें सर जी।
1: रूपचंद जी नमस्कार, आपको सभी सुनने वाले हैं, अगर आपके परिवार जनों को बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
2: आज भी सुना पिक्चर का नाम है सबसे बड़ा खिलाड़ी, ईद के बोल है हर दिल में है रब बसता।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में। कुल किया धन्यवाद।

दावा हमेशा धोखा होता है। ठग आपको फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर पैसा डालने के लिए कहते हैं। वहां आपको दिखाया जाता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असल में सारा पैसा धोखेबाजों के खाते में चला जाता है। याद रखें, न कोई सेलिब्रिटी और न ही सरकार कभी भी किसी निवेश पर गारंटीड रिटर्न की गारंटी देती है। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। संक्षिप्त और प्रभावी रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो बताएं। मैं और छोटा स्लैब

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: ओहन।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर से।
1: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: रांझना।
1: रांझन सॉन्ग?
0: हाँ
1: बिल्कुल, सुना रहे हैं।

0: हेलो,
1: नमस्ते सर
0: जी। नमस्ते,
1: गुड मॉर्निंग। और बढ़िया हो ना, अच्छे हो ना?
0: हाँ अच्छे हैं सर, आपकी दुआएं हैं। हाँ, आपका नाम बताएं पहले।
1: सर विनोद कुमार सैनी।
0: विनोद कुमार जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी मऊकला।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर मूवी का नाम है मोहब्बतें और सॉन्ग का बोल है हमको हमी से चुरा लो।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना। रेडियो डीएस में कुल के धन्यवाद।

0: नमस्ते सर
1: जी। नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
0: चौधरी निरंजन कर रहा हूँ।
1: चौधरी जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप?
0: गाना आज आपका सुना दे
1: भाई सर। आप समय कार्यक्रम है आपकी की समय बजेगी हमारी तो पूरे दिन चलती रहती है।
0: मेरी फरमाइश यही है सर कि आपकी तरफ से कोई गाना सुनाया जाए।
1: अच्छा, ये भी फरमाइश में बन जाती है। चलो ठीक है सर, सुनाते हैं आज आपको आपके फरमाइश का ये बेहतरीन सगा।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS। One more.

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: राहुल गुजर।
0: राहुल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: वार्निंग।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश पे।

0: नमस्ते सर
1: जी, नमस्ते, नाम बताएं आपको।
0: आसाराम जागा सर।
1: आसाराम जी बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: गंगापुर सिटी अम्बेडकर धर्मशाला के पास से।
1: आसाराम जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: तेरा बरसाना प्यारा लगे।
1: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपको, आपकी सरप्राइज का ये बजे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: नाम बताएं सर आपका?
1: आसिम मेरा।
0: मीना जी बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर से जी, नथिया कॉलोनी।
0: मीना जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैं पूछो क्या हो, दिल के लिए जाना।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी सुनाई।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: गौरव, दाता श्रुति।
1: गौरव जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: दाता श्रुति।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: गेट ब्लैक।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश सही है।
2: वन लास्ट चांस।
3: व्हाट लास्ट चांस? कितने चांस? शेम ऑन यू, यू नो वेरी वेल वो लैंड मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट है।
2: आई नो सर,
3: मुझे वो लैंड चाहिए एट एनी कॉस्ट। अगर तुमसे नहीं हो पाता,
2: लास्ट चांस प्लीज।
3: पैसे मारो मुंह पे।
4: अरे ओ जी, का डगा छोरी का क्यों सर पचड़ रहा है बेचारी के?
2: दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। ओके,

0: सारी जमीन ये कौन है?
1: वही तो है असली मालिक।
2: I'm sorry सर, मुझे लगा यही मालिक है।
0: और आप?
1: मैं तो डीलर हूँ जी।
0: लव, मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं।
1: सर, नमस्ते सर, ये जमीन के मालिक और ये कंपनी के MD।
3: कर लो जी आपस में बात।
0: ये लो चेक, आज से जमीन हमारी।
4: केडी, यह धरती मेरी माँ है, इसने जन्म दिया मारता है।
5: बस बस बस बस बस बात सुन भाई, यह धरती है मारी, आराम को नहीं बेच दे।

0: आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा तेज बोले। शिवानी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बताए शिवानी जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? हिटलर।
1: हिटलर
0: थोड़ा सा तेज बोले, आपकी आवाज कम आ रही है।
1: हिटलर
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताए।
1: माही।
0: माही कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: आपको
0: बताए माही जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: गालिया।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: रवि।
1: रवि कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: हालात बने हुए हैं।
0: गंगापुर।
1: बताएं रवि जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: गाड़ी 150 बजा रहा।

दोस्तों 12:22 का समय हो चुका है। फिलहाल आप मेरे साथ हूँ 99.6 रेडियो ओडिया गंगापुर सिटी का तड़का भर में आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 40 डिग्री के लगभग पहुंच चुका है और दोस्तों आप सभी से अनुरोध है घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6
1: 89.6 रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर 89.6 पे रेडियो DS यहां हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS

0: दोस्तों दोपहर का एक बज चुका है, लेकर हाजिर हूँ तो आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश के बाद नए तराने कीजिए। नए तराने कार्यक्रम का थोड़ा सा इंतजार।
1: 89.6 पे रेडियो डीएस, यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

दोस्तों एक बजकर 10 मिनट का समय हो चुका है। फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के साथ है। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना

दोस्तों नए दराने कार्यक्रम में चर्चा करेंगे आज लालच बुरी बुला पर। लालच बुरी बुला है जी हाँ दोस्तों, आजकल डिजिटल युग है और डिजिटल युग में आप और मैं सब ही एक चीज को जानते हैं।

से किसी भी ऐप या व्यक्ति के साथ साझा ना करें, चाहे वो हमारे जान पहचान या रिश्तेदार ही क्यों ना हो। दोस्तों संगठित जो लिंक होती है, कभी कभी हमारे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम फेसबुक पर ऐसे लिंक आ जाते हैं जैसे बिजली का बिल बकाया, पर्सनल लोन और डिलीवरी के नाम पर कभी कभी अनजान लोग हमें लिंक भेज देते हैं, तो हमें लिंक को कभी ओपन नहीं करना चाहिए दोस्तों। और याद रखें, यदि हम किसी भी प्रकार का लिंक अगर ओन कर देते हैं या डाउनलोड कर लेते हैं, तो उससे हमारा मोबाइल हैक होकर वो सारे डाटे को उपयोग में कर सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं।

दोस्तों कुछ व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज आते हैं जैसे हमारे रिश्तेदारों की फोटो लगा लेगा, रिश्तेदार के अलावा जैसे हमारी जान पहचान का कोई भी व्यक्ति होता है तो उसकी फोटो लगाकर और नाम लिखकर वो हमें सीधा मैसेज करेगा, यार मैं हॉस्पिटल में हूँ या किसी काम में फंसा हुआ हूँ, थोड़ा सा पैसे की हेल्प करना। तो इस प्रकार से हमें ये कन्फर्मेशन जरूर करना चाहिए कि वो जो पैसे मांगना व्यक्ति है वो हमारा रिश्तेदार या हमारा परिचित है। एक बार कॉल करके अवश्य कन्फर्म करें, उसी के बाद में हम सामने पार्टी को पैसे का भुगतान कर सकते हैं। दोस्तों चोर बहुत शातिर होते हैं, यदि फिर भी हम उनकी चुंगल में फंस जाते हैं तो हम अगर हमारे मन में ठगी महसूस करते हैं कि हम ठगे जा चुके हैं तो आप हेल्पलाइन जो नंबर है सरकारी 1930 पर कॉल करें या ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर, यहाँ पर भी अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं और संबंधित जिस बैंक में हमारा अकाउंट होता है उस बैंक को सूचित करते हैं, बैंक के कस्टमर केयर पर तुरंत कॉल करके और या नज़दीक शाखा में जाकर।

0: बसवा कहाँ जा रहे हो?
1: करिश्मा बुलाने जा रहा हूँ।
0: बहू को अभी 2 दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
1: 2 दिन 2 साल जैसा नहीं लग रहा, और बारिश भी आने वाली है।

बाबा आपने मुझे बचपन से सिखाया है, जो चीज मैं हासिल ना कर सकूं उसे जला दूं। लेकिन इस बार अपने बेटे को जो चाहिए वो या तो मैं हासिल कर लूंगा या खुद को जला।

यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: दोस्तों शाम के 3 बज चुके हैं, लेकर हाजिर रहूंगा थोड़ी देर में आपका मन पसंद कार्यक्रम बैक टू बैक गानों का। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे, अरे, लेकिन, लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात लेकिन एक बात

89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। यहां हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो डीएस, यहां हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस,
1: शहर का नया मैजिक। रेडियो डीएस 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर। फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का।

दोस्तों 4:30 का समय हो चुका है। फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के साथ आप लुफ्त उठा रहे हैं या आनंद ले रहे हैं रेडियो बीस का। लेकर हाजिर हूँ आपका मन पसंद और फेवरेट कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: जी नाम बताएं आपका।
1: चिनू सैनी।
0: चिनू सैनी जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: लाल सोट से।
0: लाल सोट से बात कर रहे हैं, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: गुलाबी शरारा।
0: गुलाबी शरारा?
1: हाँ
0: बिल्कुल, सुनो सुना रहे हैं आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना। रेडियो डीएस में कॉल किया है, धन्यवाद। हेलो।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: चौधरी निवेदन कर रहा हूँ सर, महावीर जी।
1: चौधरी जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हो
0: सर? गर्मी कैसी पड़ रही है?
1: गर्मी बहुत ज्यादा है सर।
0: ज्यादा है क्या?
1: हाँ,

0: यूज करें, कोल्ड ड्रिंक्स को तौबा करके कपड़े थोड़े लूज करें।
1: क्या बात है सर, बड़ा ही आनंद आ गया आपकी बात सुनकर। तो पता है
0: सरल उपाय सर, जो भी अपना लेगा सुखी रहेगा, सरल उपाय है।
1: बिल्कुल सर, मक्की का पानी तो अमृत है इस समय में।
0: कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिए हैं और कपड़े थोड़े लूज पहने।
1: बिल्कुल, गाना बताएं सर।
0: चलो गाना है, प्यार का बदला प्यार से देना।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का, ये बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कुल किया। धन्यवाद।
2: जैसे कि हमारा सॉन्ग गुलाबी शरारत रिलीज हो चुका है, तो प्लीज कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको हमारा सॉन्ग, जो कि आया यंग उत्तराखंड ग्रुप चैनल से। और जिसको पसंद आए प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। और
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: गुड आफ्टरनून सर।
1: नाम बताएं आपका।
0: सर सवाई माधोपुर से मोनिका बोल रहे हैं।
1: मोनिका जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
0: चाहे तुझको चाहूंगी हरदम।
1: बिल्कुल सुना रहे मैम आपका, आपकी फरमाइश से बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कॉल किया, धन्यवाद। हेलो

0: जी नाम बताएं।
1: सर नाम तो बाबू खान है।
0: बाबू खान जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: हम इंतजार करेंगे।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी सुनाई इससे बेहतरीन सा।

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं आपका।
1: हरिओम।
0: हरिओम जी, कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर से। ठीक
0: है, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: माँ तो प्यार माँ।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपको आपकी प्रोवाइड पे गाना। हेलो।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो डीएस, यहां हर बीट में है सिटी का स्वर।
1: नमस्ते
2: जी। नमस्ते, नाम बताएं सर आपका। रईस खान जी, कहाँ से बात कर रहे
1: हैं?
2: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: सही आना सर।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी सरवाइस पे बेहतरीन सगा।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: सौरभ मीणा।
0: सौरभ जी कहाँ से बात कर रहे हैं? बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर तेरा नाम मेरे हरे
0: सांस पे सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश से ये गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो
2: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
2: मिराज।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर सिटी।
1: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: मुमताज सॉन्ग।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। मुमताज

0: हेलो, नाम बताओ सर।
1: शिवम सोनी।
0: शिवम कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: बंदापुर से।
0: गाना बताएं सर।
1: लोग पढ़ते हरियाणा के।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश से ये गाना।

0: जमाल भाई डक्कू दलबीर ने अपने शराब के सारे कारखाने लूट के उसमें आग लगा दी।
1: जमाल भाई डाकू दलबीर अगला कोनी बे डाकू भीम ने उसके लात मिला लिया।
2: अरे थाम मेरे मुंह का निके देखो हो, तू मेरी बात सुन ले। इन दो दिन में उन दोनों आ की लाश चाहिए मने। जाओ
1: ऐसा होगा भाई।

मशहूर हस्तियों या सरकारी नेताओं के डीप फेक वीडियो बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति आपको निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। निवेश चाहे शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, सोना या कोई भी हो, गारंटीड रिटर्न का दावा हमेशा धोखा होता है। ठग आपको फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर पैसा डालने के लिए कहते हैं। वहां आपको दिखाया जाता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असल में सारा पैसा धोखेबाजों के खाते में चला जाता है। याद रखें, न कोई सेलिब्रिटी और न ही सरकार कभी भी किसी निवेश पर गारंटीड रिटर्न की गारंटी देती है। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। संक्षिप्त और प्रभावी रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो बताएं। मैं और छोटा स्लैश और भी आकर्षक संस्करण भी बना सकता हूं।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

चलो चलो चलो चलो चलो, आंखें बंद करो, ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस, और अगर गाड़ी चला रहे तो आगे खोलो बंद मत करो। पर एक रिसर्च के मुताबिक 100 लोगों पे ये रिसर्च हुआ और उनसे कहा गया कि आंखें बंद, उसके बाद आंखें बंद करके पट्टी यानी ब्लाइंड फोल्ड करने के बाद उनसे सीधे चलने को कहा गया, तो कोई भी सीधा नहीं चल पाए, थोड़ी देर सीधे चले और उसके बाद वो सर्कल यानी गोल गोल घूमने लगे। और उसके बाद पता चला कि जब तक हमारे पास कोई विजुअल पॉइंट ना हो, कहीं फोकस ना हो, हम सीधा नहीं चल सकते। अगली बार अगर दोस्त से आपको शर्त लगाना हो तो उसकी आंखों पे पट्टी बांध देना और बोलना कि चल सीधे चल के दिखा सारे पैसे आपकी जेब में। फिलहाल अमेजिंग गाने सुनो रेडियो डीएस 89.6 पे।

0: आपको स्थिति की धरकर रेडियो डीएस।
1: देखो, आपको कोई और बीमारी है या नहीं मुझे पता नहीं, पर आपको एलोडॉक्सोफोबिया है। हाँ हाँ, आपको ट्यून इन कर रखा है आपने 89.6 रेडियो डीएस। और एलोडॉक्सोफोबिया है क्या? ये है फियर ऑफ ओपिनियंस। किसी के ओपिनियन से अगर आपको डर लगता है तो आपको एलोडॉक्सोफोबिया है। और इस चीज को मैं कैसे प्रूव करूं? अब मेरा ओपिनियन है कि भैया आने वाले बैक टू बैक जितने भी गाने आप सुनोगे वो अमेजिंग होने वाले। ये तो मैंने उल्टा ही फैक्ट प्रूव कर दिया, क्योंकि भैया इस स्टेटमेंट के मुताबिक आपको एलोडॉक्सोफोबिया नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरा ओपिनियन नहीं है कि आने वाले गाने बैक टू बैक अमेजिंग होंगे। ये ओपिनियन नहीं है तो फिर क्या है? ये फैक्ट है। सुनते रहो 89.6 रेडियो डीएस।

0: सोनापुर सिटी की धरतर रेडियो डीएस।
1: देखो, गंगापुर सिटी की एक खास बात है, क्या है मैं नहीं बताऊंगा। ट्यून इन कर रखा है आपने 89.6 रेडियो डीएस, और आज का शो भैया यही तक था। अमेजिंग गाने सुने आपने बैक टू बैक, और आने वाले गाने भी अमेजिंग होने वाले। पर जाने से पहले एक शायरी पेश करूं अगर, कि दिन को होता है दिन और रात को आती है रात। वाह वाह वाह, बहुत ही डीप बात। दिन को होता है दिन और रात को आती है रात। शो यही तक था भैया, फिलहाल खत्म करते हैं बात और गाने सुनो अमेजिंग बैक टू बैक ओनली 89.6 रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डी एस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी की धड़कन
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतल।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: सिंगापुर सिटी की धरतर रेडियस
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। आज सफरनामा में हम बात करेंगे सन 1991 में प्रदर्शित राज कपूर साहब की महत्वाकांक्षी अंतिम फिल्म हिना के बारे में। फिल्म हिना में ऋषि कपूर साहब और पाकिस्तानी अभिनेत्री ज़ेबा बख्तियार ने इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। आपको बता दें कि इस फिल्म में करिश्मा कपूर का भी काम करने का बहुत मन था। वो अपने दादा की फिल्म में बतौर अभिनेत्री काम करना चाहती थी, लेकिन उनके दादा यानी राज कपूर साहब ने फिल्म में चिंटू अंकल यानी ऋषि कपूर साहब को ले लिया था, इसीलिए उनका सपना पूरा नहीं हो सका और वो फिल्म हिना का हिस्सा नहीं बन पाई। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: 89.6 पे रेडियो डीएस

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ। आज सफरनामे में हम बात कर रहे हैं फिल्म हिना की। 1991 में बनी इस फिल्म को ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा, निर्माण और निर्देशन रणधीर कपूर ने किया। मुख्य कलाकार इस फिल्म में ऋषि कपूर साहब, जेबा बख्तियार और अश्विनी रहे। इस फिल्म का एक बहुत सुंदर गीत है चिट्ठियां दर्द फिराक वालिया। इसके गीतकार हैं नक्श लालपुरी। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ।
0: 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.
1: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ. फिल्म हिना के बारे में बात हो रही है और उसके टाइटल सॉन्ग की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. फिल्म हिना के टाइटल गीत के लिए जब बातचीत चल रही थी तब राज कपूर साहब ने रविंद्र जैन साहब जिनका इस फिल्म में संगीत था उनको समझाया कि नायिका हिना का इंट्रोडक्शन सीन है जिसमें वो अपने बारे में खुद को बताती है. इस सिचुएशन पर गीत चाहिए. रविंद्र जैन साहब लिख कर लाए. मैं हूँ खुश रंग हिना, जिंदगी में कोई रंग नहीं मेरे बिना. ये सुनकर राज कपूर साहब बहुत खुश हुए और कहा कि बिल्कुल ऐसे ही मुखड़े की उन्हें उम्मीद थी. यही कुछ बातें थी राज कपूर साहब के बारे में. फिर आपसे मिलूंगी. अभी के लिए इतना ही. 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ.
0: हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.

0: बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: नाम में कितनी शक्ति है सोचिए। अगर आपको कोई जोर जोर से बुलाए तो क्या पलट कर नहीं देखेंगे? क्या बार बार कोई धीरे धीरे आपका नाम ले तो एक बार मुड़कर नहीं देखेंगे? मैं हूँ आरजे खुशी। सोचिए अगर हमारे नाम के साथ में ऐसा है तो क्या ऊपर वाले का नाम लेने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता होगा? ये हमें तब तक लगता है जब तक हम ऊपर वाले का नाम नहीं लेते। एक बार अगर आपने नाम लेना शुरू किया ना तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि वो आपकी सुन भी रहा है। अभी तक हमको ऐसा लगता है कि वो हमारी सुन ही नहीं रहा है, तो आप सोचिए क्या आप भी अपने सच्चे दिल से उन्हें पुकारने की कोशिश कर रहे हैं? चलिए एक बार सच्चा दिल भी साइड में रख दीजिए, क्या आप केवल पुकार भी रहे हैं? नहीं ना। इसलिए जितनी बार आप उनको पुकारेंगे उतनी बार आपको महसूस होने लगेगा कि वो आपके आसपास ही हैं और वो आपको रेगुलरली सुन रहे हैं। आज के दिन से ये बदलाव करने की कोशिश हम कर सकते हैं कि जो भी काम हम कर रहे हैं उस काम में एक नाम को हम याद रखें जो भी हमें प्रिय हो, राम कृष्ण या जो भी। आती हूँ थोड़ी देर में, मैं हूँ आरजे खुशी।
0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सर्दियों में सबसे ज्यादा जो चीज खाई जाती है वो होता है च्यवनप्राश। मैं हूँ आरजे खुशी और आपने सुना होगा कि च्यवनप्राश को केवल सर्दियों में खाना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं कहता है। च्यवनप्राश में जो मुख्य चीज होती है वो होती है आंवला, और उसमें होता है विटामिन सी जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, यानी कि बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। और अगर आंवला आप वैसे ही खा रहे हैं तो बहुत अच्छा, कच्चा आंवला खा रहे हैं, आंवले का मुरब्बा खा रहे हैं या आंवले को कैंडी के फॉर्म में खा रहे हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन च्यवनप्राश में मुख्य भी आंवला ही होता है, यानी कि आंवला केवल सर्दियों में नहीं खाया जाता, आंवला पूरा साल आप कभी भी खा सकते हैं। हाँ, सर्दियों में विशेषकर हम चाहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, इसलिए हम लोग कहते हैं कि सर्दियों में तो हमको च्यवनप्राश खाना ही खाना चाहिए। लेकिन च्यवनप्राश एक ऐसी चीज है जो पूरा साल हम खा सकते हैं और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रह सकती है। मैं हूँ आरजे खुशी, लौट कर आती हूँ।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सर्दियों में कुछ चीजें हैं जो हम बिल्कुल भूल जाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती है, जैसे कि पानी पीना। हमको याद ही नहीं आता है सर्दियों में कि पानी भी पीना है। मैं हूँ आरजे खुशी, क्योंकि प्यास नहीं लगती है ना, मौसम ही ऐसा होता है। लेकिन तीन ऐसी चीजें हैं जो आपको सर्दियों में बिल्कुल करनी ही करनी है। पहली चीज तो बार बार आपको पानी पीना है, चाहे तो आप किसी को बोल देंगे मुझे याद दिला देना, या फिर आप अपने फोन में रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं, अलार्म लगा सकते हैं, ताकि आपको बार बार पता चले कि भाई पानी पीना है, हर आधे घंटे में आपको थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। दूसरा, तेल लगाना। पूरा शरीर सर्दियों में ड्राई हो जाता है, यानी कि सूख जाता है। अगर हम लोशन लगा सकते हैं या तेल लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा हमारी स्किन के लिए। बाकी तीसरी चीज जो कि बहुत जरूरी है, वो है धूप के नीचे बैठना, वरांडे में या छत पे जाकर। और जब आस पड़ोस वाले भी आ जाते हैं, घर वाले भी सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसका मजा ही कुछ और होता है। ये तीनों चीजें आपकी शारीरिक हेल्थ के लिए भी अच्छी है और मानसिक हेल्थ के लिए भी अच्छी है। मिलूंगी कल इसी पते पर इतने ही बजे। मैं हूँ आरजी खुशी।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: देखो देखो देखो, जो गाना भी आपने सुना है वो बड़ा ही प्यारा गाना था, लेकिन उससे भी प्यारे आप हो क्योंकि आपने ट्यून इन कर रखा है 89.6 डीएस। और एक फैक्ट बताना चाहूंगा मैं कि हमने सुन रखा है घड़ियाल के आंसू, मगरमच्छ के आंसू, और हमने देखा भी है, लेकिन हमने क्या नहीं देखा है, क्रोकोडाइल, घड़ियाल के जीभ। और ये फैक्ट है कि क्रोकोडाइल्स जो है, मगरमच्छ जो है, वो अपनी जीभ बाहर नहीं निकाल सकते। मैं खुद से नहीं बना रही, ये वाकई में फैक्ट है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप अपने बुआ जी, अपने मौसी जी, अपने रिश्तेदारों की जितनी भी बुराई कर लो, जितनी भी बार कह लो कि भैया उनकी जो जुबान है वो कैंची की तरह चलती है, भले ही चलती हो, लेकिन एक बात तो प्रूफ हो गया, क्या कि वो क्रोकोडाइल्स नहीं है। हंसू मत मेरी बात पे। चलो आपके लिए मैं 4 अमेजिंग गाने बैक टू बैक प्ले कर रहा हूँ 89.6 रेडियो डीएस पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: நன்றி நமஸ்காரம்.
1: गंगापुर सिटी की धरतल
2: अरे अरे अरे अरे भैया सांस तो ले लो, ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस और हम गुनगुनाते हैं। कई बार हम गुनगुनाते कैसे? अच्छा आपको नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ, चलो ध्यान से सुनो। आँख में कैसी, बस बस बस बस बस इतना काफी। अब फैक्ट ये है भैया कि गुनगुनाना तो सही है, लेकिन अगर आप अपनी दोनों उंगलियां लेके अपने नाक को बंद करोगे, चलो करो करो करो, दोनों उंगलियां पकड़ो, नाक को बंद करो, मुंह से सांस लेना बंद करो और उसके बाद गुनगुनाने की कोशिश करो तो गुनगुना नहीं पाओगे। लो मैं करके सुनाता हूँ। बस बस बस भैया सांस तो ले लो, फिलहाल गाने सुनो। प्ले करता हूँ मैं आपके लिए बैक टू बैक चार गाने।
1: गंगापुर सिटी की धरतल।

0: गंगापुर सिटी की धरकर रेडियो डीएस।
1: यार आप बहुत ही ध्यान से गाने को सुन रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार ध्यान से मैं अगर दो लाइन पेश कर दूं तो वो भी आप सुनेंगे। तो हाँ सुनो, ध्यान से पेश करता हूँ आपके खिदमत में अलविदा। अलविदा कह ही देते जाते वक्त, अलविदा कह ही देते जाते वक्त, कब तक एतबार करते रहे हम। और नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, मत मनाओ गम भैया, बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज का शो यही तक था और वापस से कल मिलूंगा सेम टाइम सेम जगह, कहाँ रेडियो DS 89.6 पे।
0: गंगापुर सिटी की धरकर।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। वक्त तो चला है आपके फेवरेट सेगमेंट सफरनामे का। हिंदुस्तानी सिनेमा में अनेक अभिनेत्रियों ने अपनी भावपूर्ण अदाकारी से खास पहचान बनाई है, लेकिन ट्रेजेडी क्वीन सिर्फ और सिर्फ मीना कुमारी कहलाई। दर्द की देवी को गुजरे हुए कई साल हो गए हैं, पर सिने प्रेमियों के जहन में वो आज भी जिंदा है। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ अब आपको सुनाने जा रही हूँ फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई जो सन 1960 में आई थी। इस गीत में मीना कुमारी राजकुमार के साथ अपने खामोश प्रेम के खो जाने का ताना नादिरा जी को इस तरह देती है। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन की टीम ने इस गीत को कुछ ऐसे अंदाज में बनाया है कि आज भी पिकनिक के लिए ये पसंदीदा गीत माना जाता है। 89.6 DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ।